0: श्रोते हो नमस्कार. गोष्टी तुमच्या आमच्या या कार्यक्रमात सर्वांचं स्वागत आणि मी आहे तुमची मैत्रीण आर जे ऋतू तुमच्या सोबत. तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ नगर 90.4 FM आवाज तुमचा. मंडळी, नुकताच 29 मे 2026 रोजी संपूर्ण भारत देशामध्ये आपला हिंदी पत्रकारिता दिवस हा अत्यंत उत्साहामध्ये साजरा करण्यात आला आणि त्याचप्रमाणे आपल्या स्नेहालयामध्ये सुद्धा हा दिवस अत्यंत उत्साहामध्ये पार पडला. स्नेहालय डॉक्टर शंकर केशवाडकर चॅरिटेबल ट्रस्ट, आचार्य जगदीशचंद्र मिश्र लघुकथा सन्मान समिती, हिंदी सृजन सभा तसेच लघुकथा शोध केंद्र अहिल्यानगरच्या संयुक्त विद्यमानं आयोजित राष्ट्रीय गोष्टी म्हणजेच 21वी सदी के प्रथम रजत खंड में चेतना के नवीन स्वर म्हणजेच की समकालीन हिंदी लघुकथेंच्या विशेष संदर्भामध्ये अनेक लघुकथाकार तसेच अनेक दिग्गज लेखक हे सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमाचे आयोजन स्नेहालयाचे संस्थापक डॉक्टर गिरीश कुलकर्णी तसेच हिंदी सृजन सभेच्या संस्थापिका डॉक्टर ऋचा शर्मा यांनी केलं. आज आपण ऐकणार आहोत त्या कार्यक्रमामध्ये अनेक लघुकथाकारांनी तसेच दिग्गज लेखकांनी त्यांच्या लघुकथा ज्या सादर केल्या होत्या त्याचा संपादित वृत्तांत.
1: डॉक्टर ममता झा जी, आप पिछले 26 सालों से नरसी मोहनजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के कनिष्ठ विभाग में कार्यरत है, बोर्ड ऑफ स्टडीज महाराष्ट्र के मेंबर है, संकल्प साहित्य कला मंच की स्थापना की एवं अपने 3 सखियों के संग मिलकर जिसके अंतर्गत पूरे महाराष्ट्र के हिंदी शिक्षकों को पाठ्यक्रम के लिए एक ट्रेनिंग प्रदान की और साहित्य और कला में रुचि रखने वाले शिक्षक मित्रों को मंच प्रदान करते रहे. पिछले 3 वर्षों से हिंदी सामना में मैथिली भाषा में हास्य व्यंग का कॉलम छपता है. साहित्य अकादमी द्वारा अनुवाद कार्य के लिए चयन. मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर ममता झा जी. धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और इतना सुंदर मौका प्रदान करने. मेरी लघुकथा का शीर्षक है उत्सव. गौरी महादेव से आग्रह करती हैं वसंत ऋतु में पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए चलिए. महादेव, जाने की क्या आवश्यकता है, यही से पूरा देख लीजिए. पर पत्नी के जिद के आगे महादेव हार गए. अस्तु दोनों अधेड़ दंपति का रूप धारण कर पृथ्वी पर एक बहुत बड़े जगमगाहट वाले स्थान पर प्रकट हुए जिसे मानव मौत के नाम से संबोधित करता है. गौरी भीतर प्रवेश करने पर कहती है, आहा, यहाँ तो कैलाश पर्वत जैसे शीतलता है. महादेव, इसी शीतलता के प्रभाव से कैलाश की शीतलता पर खतरा मंडरा रहा है. वहां की साज सज्जा देखकर गौरी विस्मित होते हुए महादेव से प्रश्न करती है, यह कौन सा उत्सव पृथ्वी पर मनाया जा रहा है जिसके लिए यहाँ पर लाल रंग के हृदय के आकार के की सज्जा हृदय के आकार की वस्तुओं की सज्जा की गई है. महादेव, जो पृथ्वी लोक के पति के कैरेक्टर में प्रवेश कर रहे थे, बोले, मुझे भी ठीक से पता नहीं. गौरी माता पर भी पृथ्वी लोक की पत्नी का प्रभाव पड़ चुका था. बोली, आपको सब पता है, बस मुझे बताना नहीं चाहते हैं. महादेव, यही अविश्वास की बात के कारण पृथ्वी पर सब झंझट हो रहा है. झूठ पर विश्वास भी कैसे हो. महादेव समझ गए, बिना जाने मानेगी नहीं. दोनों फूडकोर्ट पहुंचे, वहां चहल पहल के बीच एक नवयुवक अकेला चुपचाप बैठा हुआ दिखा. महादेव गौरी से कहते हैं, तुम यहाँ बैठो, मैं उस युवक से पूछकर आता हूँ. महादेव उस मानव से पूछते हैं, यह कौन सा उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है. मानव, भांग खाए हैं क्या. महादेव, हाँ. मानव को लगा मजाक कर रहे हैं. बोला, आपके समय में इस उत्सव की इतनी मार्केटिंग नहीं होती थी, इसलिए आपको शायद आपको इसकी जानकारी नहीं है. ऊपर से आप लोग पारिवारिक जिम्मेदारी उठाने वाले लोग, उस कारण से इस सब के द्वारा ध्यान देने की फुर्सत ही कहाँ थी. ये उत्सव 8 दिन का मनाया जाता है. पहले दिन गुलाब देकर आरंभ किया जाता है और अंतिम दिन वस्तु भेंट करके समाप्ति की जाती है. महादेव, तो आप क्यों चुपचाप बैठे हैं यहाँ. मानव, कुटिल मुस्कान के साथ, मैं इस उत्सव का आयोजक हूँ. महादेव सोचते हैं कि गौरी को इन सब की जानकारी प्राप्त हो उससे पहले उसे कैलाश पर्वत पर ले जाना बेहतर है।

मेरी लघु कथा का शीर्षक है धूप। चंदा के घर धूप नहीं आती थी, जरा सी भी, ना सुबह की धूप ना शाम की धूप। शायद मौसम बदलने पे धूप आएगी, उसको ऐसा लगता था। गर्मियां खत्म हो गई, सर्दियां आ गई, लेकिन धूप सर्दियों में भी नहीं आई। वन रूम किचन, छोटे से गांव के बड़े से आंगन वाले घर से निकलकर अब यही उसका घर था। एक ठंडा अंधेरा कमरा, बिल्कुल उसके प्रेम विहीन रिश्ते के जैसे। और इन दोनों में रहते उसको 15 महीने हो चले थे। इसी अंधेरे कमरे में उसकी कोख में एक अंकुर फूटा, तो उसने उसको जी जान से प्यार किया। कल चंदा ने अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया है, उसने उसका नाम सूर्य रखा है।

0: रेडियो नगर 90.4 एफएम आवाज सुनता।
1: तुम्ही ऐकत आहात गोष्टी तुमच्या आमच्या आरजे ऋतु सोबत।
2: हमारे अगले लघु कथाकार है डॉक्टर सुनीता शेरगांवकर। आप साहित्य संगीत एवं रंगमंच से जुड़ी बहुआयामी प्रतिभा की धनी है। आपने बरकत उल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से छायावादी कवियों के गीतों का सांगीतिक दृष्टि से अध्ययन विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। हिंदी एवं मराठी साहित्य, कविता, बाल कथा लेखन तथा रंगमंच अभिनय में इनकी विशेष रुचि रही है। इनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं पुस्तकों में प्रकाशित हो चुकी है तथा वे साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से सहभागिता निभा रही है। संगीत, काव्य और सांस्कृतिक चेतना के क्षेत्र में इनका योगदान उल्लेखनीय है। सो आमंत्रित है डॉक्टर सुनीता जी। सभी सभागृह में उपस्थित श्रोताओं को भी मेरा सादर नमन। अपनी प्रस्तुति के पहले मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ और क्षमा मांगना चाहती हूँ। आप पूछेंगे नहीं, मैं बता। लघु कथा लेखन की जब शुरुआत की ना, एक मन में विचार आया, पर वो लघु कथा न रहकर कहानी बनती चली गई और मेरे मन को इतनी अच्छी लगी कि मैंने कहा चलो इस बार लघु कथा नहीं लघु कहानी सुनाते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सर कहेंगे कि लघु कथा कहा था बोलने के लिए, आप तो कहानी लेके बैठ गई। कहानी का शीर्षक है दूसरा विकल्प। वो आज फिर सीढ़ियों पर बैठे तमाकू मिल गए थे। नाम था सरिता। मैं स्कूल से लौटी तो वो मुझे देखकर सहम गई। उसे देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि लगा उसे जोर से डांटूं, लेकिन पुनः उसका सुस्त और मान चेहरा देखकर मैं चुप रही। वो अनुनय विनय करते बोली, मुझे काम पर ले लीजिए ना, भाई मुझे काम पर ले लीजिए ना। मैं उसको पहले ही काम से हटा चुकी थी, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरी सहानुभूति अर्जित कर ली और मैं बिखर जा रही। लेकिन आज उसका चेहरा कुछ अलग से ही दमक रहा था। चेहरा हल्के मेकअप से सजा था, बालों में गजरा, हाथों में भरी भरी चूड़ियां, कानों में लटकते कुंडल, हल्के गुलाबी रंग की साड़ी, पांव में पायल। देख मैंने उसे पूछा, कहाँ गई थी, क्या शादी में गई थी? वो बोली, नहीं तो। तो फिर ये सरदर्श ये क्या है? मैंने पूछा, ये क्या है सरदर्श? क्यों है? तुम्हारा पति भी साथ गया था? वो मर गया। उसका गुस्से से चेहरा कंपना गया। वो तो मर गया। मर गया? मैंने बड़ी आंखों से उसके बालों में हवा से झूलती बेनी की तरफ देखा और कहा, वो फूल हवा से सूखकर पीले हो चुके थे। अब मैं क्या पूछूं? कोई भी सवाल करना अब मेरे लिए ना था। कुछ क्षणों के लिए मैं पिछले समय में गुजरी उसकी रुदर व्यवस्था व्यथा को देखकर मन ही मन घबराने लगी। उसका बेटा शराब और जुए के व्यसन में लिप्त था। बेटी कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन उसे पुराने कपड़ों की उतरन बिल्कुल नहीं खाती थी। फोन भी जरूरी था, माँ की कमाई लूटती, खसोती और अपने शौक में लगती। बेटा घर के सामान को कलारी के हवाले कर चुका और अब तो उसने धक्के मारकर सरिता को सड़क पर भटकने के लिए छोड़ दिया। सरिता तीन दशा की माँ भी बिचारी, लेकिन देखने में बहुत अच्छी थी और सुदृढ़ देह इष्टि की धनी थी। उसका पति हर बार नौकरी के बहाने घर छोड़ जाता और पैसा उड़ा कर खा लिया करता। मांगना पीटना तो उसकी सर्वधर्मिता का अंग बन चुका था। सरिता का देवर प्रकाश उसकी दुर्दशा से बहुत दूर था। कई बार वो उसे खिन्न मना देखकर साथ रहने का प्रस्ताव दे चुका था, लेकिन वो सभी सावित्री पति और परिवार समाज का डर ये सब बताकर चुप रहे। लेकिन इस बार प्रकाश उसे सड़क से उठाकर घर ले आया। वो काम करता, अच्छा कमाता, शादीशुदा न होने का उसे भी घर में एक स्त्री की जरूरत थी। वो सोचता, सरिता क्या बुरी है, एक स्त्री है, देखने में अच्छी है, उसे भी इष्ट की जरूरत है। वो सोचता, सरिता तो अच्छी है, थोड़ी सी सादी सीधी मंद बुद्धि है। सरिता का यह गुण प्रकाश के लिए पर्याप्त था। कुछ लोगों में इस प्रकार की संस्कृति का चलन बहुतायत से होता ही है। धीरे धीरे समझाने पर सरिता ने प्रकाश का प्रस्ताव स्वीकार किया। उसके जीवन में इसके सिवा दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता। धन्यवाद।

0: तो मन पर आसीन सभी विद्वजन को प्रणाम करती हूँ और आप सबके भीतर बैठे गुणी श्रोता को प्रणाम करती हूँ और सीधी आती हूँ प्रभु कथा पर। शिष्य है, भगवान जी ने स्वेटर पहन लिया। कड़ाके के ठंड में हीटर से गर्म कपड़े में रजाई ओढ़ते हुए सेठ किशन लाल जी ने पत्नी से कहा, दया श्याम लला के कपड़े बन गए होंगे, दर्जी के यहाँ से मंगवाए लो, आज एकादशी है, कन्हैया को गर्म कपड़े पहना के आवेंगे। मंदिर में पहुंचकर किशन लाल ने भगवान के पहले ही पंडित जी को अच्छी खासी दक्षिणा के दर्शन करा दिए। मुस्कुराते हुए पंडित जी ने पत्नी को शॉल उड़ाई, बच्चों को मफलर टोपी दिए, सबके हाथ में फल और मिठाई दी। लाला की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर गदगद आवाज में किशन लाल ने कहा, लाला जरा बिठन ना लगे तुम्हें, बड़ो ध्यान रखो है, जो दिल्ली वाला प्रोजेक्ट मिल जावेगो तो कश्मीर से कपड़े मंगाऊंगो। लौटते समय आधे अधूरे कपड़ों में भीख मांगते बच्चों को देख सातवी और अथर ने एक साथ कहा, पापा इन्हें भी गर्म कपड़े दे दो ना, मेरे पास फालतू पैसा नहीं है फालतू कामों के लिए, इन्हें आप दो रे, जे कल फिर नंगे मिलेंगे, चलो गाड़ी में बैठो। फिर गुस्से से दया की ओर देखते हुए कहा, जे संस्कार दोगी ना तो जे घर लुटा देंगे, चलो आओ बैठो गाड़ी में। पापा प्लीज, आप पहली बार दया पति की बात नहीं मान पाई। किशन लाल गाड़ी की ओर बढ़े, दया ने बच्चों की तरफ देखा, तीनों ने गर्म कपड़ों के साथ मिले हुए फल और मिठाई उन बच्चों को दे दिए। माँ भगवान जी ने स्वेटर पहन लिया ना, मासूमियत से जब सातवी ने पूछा। दया कुछ कहने ही जा रही थी, उसने चकित करने वाला एक दृश्य देखा। उसके पति किशन लाल एक गरीब औरत की गोद में ली हुई छोटी सी बच्ची को मंदिर में मिली हुई शॉल उठा रहे थे। साध्वी और अथर को अपने से सटाते हुए खुशी से दमकते हुए चेहरे के साथ जया ने कहा, हाँ हाँ बच्चों, भगवान जी ने स्वेटर पहन लिया।
1: स्नेहालय संचलित हिम्मत ग्राम आणि कृषी प्रशिक्षण केंद्र, निवासी संकुल, सौर ऊर्जा प्रकल्प, उद्योग भवन, भाज्या पिकवणारे अर्धा एकर जागेवरील पॉलीहाऊस, नीरा लागवड, शेती, डेअरी व अल्पभूधारक आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील मुला मुलींसाठी प्रगत कृषी प्रशिक्षण देणारे केंद्र हिम्मत ग्राम आणि कृषी प्रशिक्षण केंद्र, या प्रकल्पातील प्रशिक्षणाचा तुम्ही देखील लाभ घेऊ शकता। अधिक माहितीसाठी संपर्क 90111 24 90। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: लघु कथाकार जिनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी वह है नरेंद्र कौर छाबड़ा जी। आपकी अब तक देश की लगभग सभी पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित है। 40 वर्षों से नियमित लेखन जारी, 13 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। केंद्रीय निदेशालय महाराष्ट्र साहित्य अकादमी समेत लेखन के क्षेत्र में अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में 2 लघु कथाएं भी समाविष्ट है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी नरेंद्र कौर छाबड़ा जी।
1: मंच पर आज से विद्वान साहित्यकार और सभी मेरे साहित्यकार साथियों, आपके समक्ष जो लघु कथा सुना रही हूँ उसका शीर्षक है अपना काम करती रहो। आज उसे ICU से निकालकर प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। पति के साथ ही दोनों बच्चे भी वहाँ उसका इंतजार कर रहे थे। कमरे में अपने परिवार को देख उसके मन में गहरे संतोष के भाव उभर आए। कुछ देर बाद बच्चे घर चले गए तो वह पति से धीरे से बोली, कल मैंने कविता लिखी। पति हैरानी से बोले, ICU में तुमने कविता कैसे लिख ली? पत्नी ने कहा, आपने ही तो मुझसे कहा था बीमारी को अपना काम करने दो, तुम अपना काम करती रहो। बहुत चिंतन मनन चल रहा था। मैंने नर्स से कहा तो उसने अपने मोबाइल में मेरी कविता रिकॉर्ड कर ली, फिर मेरे मोबाइल में भेज दी। देखिए मेरे मोबाइल में ही होगी। पति ने बड़ी उत्सुकता से जेब में से पत्नी का मोबाइल निकाला। कविता का ऑडियो साफ नजर आ रहा था। चलो सुनते हैं, कहकर उसने ऑडियो ऑन किया। बहुत संवेदनशील कविता थी और अंत में पति के प्रति कृतज्ञता भी जाहिर की गई थी। पति ने उसके हाथ पकड़कर चूम लिए। मुझे तुम पर गर्व है, तुम्हारी हिम्मत पर, तुम्हारी योग्यता पर, कला पर और मुझे आपके सहयोग प्रेरणा पर। पत्नी भी होले से मुस्कुराती, बेशक चेहरे पर दर्द भी साफ नजर आ रहा था। चलो अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, केवल 4 कीमो लेने होंगे। पति के कहते ही वह फौरन कह उठी, अब मुझे किसी बीमारी का डर नहीं, जिसे आना है आए, मैं तो अपना काम करती रहूंगी, आपने कहा था ना। फिर दोनों ही मुस्कुरा दिए। पत्नी की आंखों में गजब का आत्मविश्वास दृढ़ता नजर आने लगी।
2: स्नेहालय संचलित स्नेहाधार प्रकल्प विधवा परित्यक्ता बालमाता कौटुंबिक अत्याचारग्रस्त महिला या सर्व महिलांसाठी काम करणारा प्रकल्प स्नेहालय स्नेहाधार प्रकल्प महिलांसाठी निवास भोजन कायदेशीर सल्ला व समुपदेशन। अधिक माहितीसाठी संपर्क 90 11 36 36 00। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: नमस्कार, माझं नाव नीता पाळवदे आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ नगर 90.4 FM आवाज तुमचा.
1: अरे अगले लघु कथाकार है सतीश चंद्र श्रीवास्तव जी, जिन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ. आप हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित कवि, लघु कथाकार एवं व्यंगकार है. इन्होंने कविता, लघु कथा और व्यंग साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देते हुए अनेक चर्चित कृतियां प्रदान की है, जिनमें खुशियों का डेरा, हाथी के दांत, मतलब अपना साथ रे बंदे तथा परदेसी या प्रमुख है. इनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए उन्हें देश की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं द्वारा अनेक राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं. वे भारतीय रेल से वरिष्ठ तकनीशियन पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी निरंतर साहित्य सृजन एवं हिंदी सेवा में सक्रिय है. मैं सतीश जी को मंच पर अपनी लघु कथा के लिए आमंत्रित करती हूँ.
2: सम्मानीय मंच और आप सभी की उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ. चेतना के नवीन स्वर के तहत ये लघु कथा, शीर्षक है गुरु दक्षिणा. खट खट खट, गुरु, ओ गुरु. अंदर से कोई जवाब न पाकर वह अपने आप में भरभराया. लगता है जल्दी सो गया, बुढ़ापा है ना, थक गया होएगा. अच्छा, एक बार और खटखटाता हूँ. खट खट, गुरु. अब भी उसने कुंडी खटखटाने के साथ एक लंबी आवाज भी लगाई. आता हूँ भाई, ये खाली पीली अपन को कौन पूछने वाला आ गया. कहते हुए उसने दरवाजा खोला ही था कि सामने कलुआ को देख आश्चर्य से मुस्कुराते हुए बोला, इस समय तू यहाँ? हाँ गुरु, बहुत दिन हो गए तुम्हारा अपन के सर पर हाथ रखे, सो चला आया. कहते हुए कलुआ पूरी श्रद्धा के साथ गुरु के पैरों में झुक गया. ओए उठना, अपन का आशीर्वाद तो हमेशा ही तेरे साथ है. और बता, कैसा चल रहा है तेरा धंधा पानी, किसी लफड़े में तो नहीं फंसा? बिल्कुल भी नहीं. जिसका उस्ताद तुम जैसा हो उसका तो कोई लफड़ा हो ही नहीं सकता. सारा मस्का मार रहा है गुरु. ये मस्का नहीं, अपुन का हकीकत है. तुम नहीं होता तो ये जमाना अपुन से कहीं भीख मंगवा रहा होता, वो भी लंगड़ा लूला या अंधा बहरा बना के. अच्छा सुन, ये टाइम इमोशन का नहीं, चल जा अपनी खोली में, बाकी बातें बाद में. क्या ठीक है गुरु, तुम जैसा बोलो. लो ये थोड़ा रोकड़ा रख लो, आज अपुन ने तगड़ा हाथ मारा है. कहते हुए कलुआ ने मुट्ठी में दबे कुछ नोट गुरु की तरफ बढ़ाए. ये तू अपने पास ही रख, अपुन का खर्चा ही क्या है, गुरु ने अपने पन से कहा. ऐसा कैसे, गुरु से मिलने के बाद दक्षिणा तो बनता है ना. देख, तू दक्षिणा देना चाहता है ना, तो एक काम कर. अब ये सब काम छोड़ और कोई ईमानदारी वाला, मेहनत वाला, सुकून वाला काम पकड़. ये पॉकेट मारी बहुत हुआ साला, अपुन पॉकेट मारी में पैसा नहीं, लोगों का हाय कमाते हैं. दर्द लेते हैं दर्द, मगर अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं. यही चपुन का दुर्दक्षिणा है, वो देता है. अचानक उस्ताद के बदलते रूप को देख कलुआ आश्चर्य से गुरु के कदमों में झुकता चला गया. बहुत बहुत धन्यवाद.
3: रसिक हो, रेडिओ नगर 90.4 FM वर पुस्तकाच्या पानातून या खास कार्यक्रमात तुम्ही ऐकू शकाल बियॉन्ड लिमिटेशन्स या पुस्तकाचं अभिवाचन. अहिल्यानगर येथील आकांक्षा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राच्या संस्थापक सविता काळे यांचा प्रवास जाणून घेऊया त्यांच्याच आवाजात. शब्दांकन आणि संपादन केलं आहे सतीश कुलकर्णी यांनी. आकांक्षा, नव्या वाटा, नव्या दिशा, मर्यादा ओलांडून स्वप्न पूर्ण करण्याची प्रेरणा. ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM वर दर रविवारी दुपारी 1 वाजता पुस्तकाच्या पानातून.

0: लघुकथा पाठ की श्रृंखला के अंत में जो लघुकथाकार बच्चे हैं, अब मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। पुष्पा कुमारी पुष्प जी, आप शिक्षा परास्नातक वनस्पति विज्ञान, स्वतंत्र लेखिका एवं प्रकाशित एक पुस्तक जिंदगी तो भी अब सवाल कर, वह अपनी लघुकथा प्रस्तुत करें। प्रणाम करती हूँ और श्रोताओं को बहुत बहुत स्नेह और आमंत्रण के साथ देखती हूँ कि आप मेरी लघु कथा को जरा गौर से सुनिएगा। लघु कथा शुरू होती है और इस लघु कथा का पहले शीर्षक सुन लीजिए, कलछुल से व्याप। कलछुल सभी वक्त जिसे हम दाल सब्जी निकालते हैं, तो कलछुल से व्याप लघु कथा शुरू होने की है। सुधा, तुमने ध्यान दिया क्या अपना बल्ती कितना बदल गया है? पहली बार पत्नी संग बलिया से बेंगलुरु बेटा बाबू से मिलने आए चंद्रेश्वर ने मन की हलचल साझा की। आपने सही कहा जी, मैं भी कल से यही महसूस कर रही हूँ कि अपना बल्बी कितना नटखट हुआ करता था, लेकिन कितना जल्दी समझदार हो गया है। सुधा को याद है बचपन में बल्बी इतना जिद्दी था कि उसे उसकी हर बात मानने की आदत पड़ गई थी। इंजीनियरिंग के बाद बल्बी की एमबीए करने की जिद हो या अपनी पसंद की लड़की से विवाह करने की, उन्होंने खुशी खुशी मान ली थी। लेकिन मुझे उसकी एक बात अच्छी नहीं लगी। चंद्रेश्वर अब असल मुद्दे पर आए। कौन सी बात जी? सुधा ने दुखते घुटनों पर दर्द निवारक तेल मलते हुए पूछा। उसका बहू के साथ रसोई में जाकर खाना पकाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पत्नी के रहते रसोई में जाकर कभी एक गिलास पानी भी अपने हाथ से न पीने वाले पति के मन की पीड़ा सुधा वक्त भी समझे। लेकिन इसमें बुरा क्या है? अरे भाई, जब घर में कलछुल मौजूद है तो अपना हाथ क्यों जलाना? ये तो सरासर बेवकूफी बात। सुधा मुस्कुराई। यह बात तो आपने सही कही, लेकिन यहां मामला अलग है। क्या अलग है जरा मुझे भी तो पता चले। असल में आपकी माताजी ने आपका ब्याह कलछुल से करवाया था, लेकिन हमारे बेटे ने ब्याह अपनी पसंद की लड़की से किया है, कलछुल से नहीं।
1: श्रोते हो, हिंदी पत्रकारिता दिवस या निमित्त आपल्या स्नेहालयामध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय संगोष्ठी निमित्त अनेक लघुकथाकारांनी आपल्या लघुकथा सादर केल्या होत्या। त्या कार्यक्रमाचा संपादित वृत्तांत आपल्या रेडिओ नगर 90.4 FM वरून प्रसारित करण्यात आला। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

जान हमें पर दोगी, कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा, देखो तुमसे

दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था।